0: दोहा को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंता
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हूँ था अबदो एकु गबो मा बाउ दुवे.

ती आहरिंग के दुआ ती आहरिंग के एदुं ती आहरिंग के दुआ दुनिया ती बाया मुहादब कुरा गोता में दो आहरिंग के एविस फरुआ देने आहरिंग ती बायं मुलिं आ तिरियुल में ती आ नामे तेनं आहरिंग ती बायं मुलिं आ तिरियुल में ती आ नामे तेनं आहरिंग के मी को दोनों कुरुम गति बामुलिं एह मीह का बदल कुल्ला ना

0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजर मिलाने की? हम तो पूरे देश की भाभी हैं।
1: बिजली सही है कि नहीं?
2: गीली पूछी दीदी।
3: फिल्म के कास्ट होंगे तेरेगा फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत, नुसरत बरूचा, अभिषेक बेनाजी, कोंकणा सिंह शर्मा, अदिति राव हैदरी, शेफाली शाहदी, मानव कोलफद हुनरवेरी थरिंगिमेने फिल्म का दक्वेदनी इंसानी गुणतोगे तेरेगा कुरिमतिवा उंदगू हालत तके देहास बाविस वना हर नेटफ्लिक्स मेदवेरी को रिलीज करे मी फिल्म क्रिटिक उंगे फरातुं बोडो थारुही बेलिबुनु अदि नेरुनु फुरतमा हफ्ता बंदुगा दिहा मिलियन वरे गिना गडीरु बला एदोसरे में कामयाब इंडिया गे ओरिजिनल फिल्म गे रिकॉर्ड मी फिल्म होदी देहास 21 वना हर गे फिल्म फिया ओटीटी अवार्ड्स का मी फिल्म 11 नॉमिनेशन लिबुनेरु एगे तेरे फर्स्ट अवार्ड कामयाब वेस्कुरी मेगे तेरेगा एमए मोलो बतला गे अवार्ड कोंकणा सेन शर्मा होता फवे
4: भारती जी आप घर पैदल जाती हैं?
5: हाँ।
4: हमारा घर भी पास में ही है, रिक्शा से 10 मिनट मुश्किल से और पैदल 15। पर शर्मा जी की बहू को कहाँ पैदल आने जाने को मिलेगा। आइए ना, हम आपको छोड़ दें।
5: आज कुछ खास है क्या?
4: आज हमारा दही बड़े खाने का मन है। आइए।
6: ये आपकी। अच्छा, आप हमसे कह रही थी ना, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं?
5: फ्रेंड्स दशरथ।
6: अरे वो नहीं, जैसे जैसे बेस्ट फ्रेंड।
3: मैं फिल्म के मैगनु थीमा की हसदवेरी कमा केतेरी कं कुडवुमा लोएबा तफात कुरुंतावगे साबों आधा के इंसानों के दिरिउलों बदल वेकेंदा गोई ಕೊಮ್ಮೆ ಬೈಕಿವೆಸ್ ವಾಕಿ ವಾಹಕೆ ಕಂಗವಿಯಸ್ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕುಳಿಫವಣಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಅಮಲ್ತಕುಣ್ಣುಕುಣ್ಣ ಹೀ ನುಕುರಾಫದ ನತೀಜಾತಕ

0: Guess the dialogue.
1: क्यों अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा?
2: तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे अर्जुन के बारे में बात करने का रिया। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। मैंने बड़ा किया है उसे, सिर्फ मैंने। तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली अपने काम से। वक्त था तुम्हारे पास कभी? वक्त था?
1: हाँ देव, मेरे पास वक्त नहीं था, बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड। मर्दों से तो कोई नहीं पूछता जब वो बिजी होते हैं। जब उनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टेल मी देव, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सच तो ये है, इस घर में मर्द मैं हूं।
3: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सुम मिनट कौम में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मी शोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफार नगा गुरतुम खास हादिया ली बेने एम्मे गीण सुवालु के जवाब रंगल कुरा बैवरी नगाणी कोमे महगेवस एम्मे फहुशोगा
0: गेस द डायलॉग
4: मशहूर तेलुगु फिल्म विक्रमाकुरुडु अदि एगे हिंदी रीमेक राउडी रातोरकी इंडिया के वियफार सिनेमा के तारीहु गवरा मुहिम मुते फिल्म मिदे फिल्म केवस मसाला जोनरा गे उफेदुन तके ओरिजिनल तेलुगु फिल्म गे साबोन देकुन इंडिया गे एक्शन फिल्म तक मुली इंडिया गे बोडो मकबूल कमे लिबुनेरु एगे हिंदी रीमेक गे साबोन देहाहु गे अहरतो गे एक्शन फिल्म तो गे फोरी बॉलीवुड गे अलुं आला वेकें दिया मि हफ्ता गे एरा मिहार बैग मि बलालानी मिदे फिल्म
5: एरा मिहार

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूं अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: थी को तुम हाउ दा ही रंगल लाए थी हैं मुन्ना ऐ कही आह हाल बला फे मुन्ना रकां कं को दिन ना है दी मुन्ना वरा उपावे
3: me fa

0: ए खियाल तक सहुराया केल देवुनी मा पोडा
1: मिहात
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वालेवुनु मिहा देने एकमकु अशाना बलहट्टा केन हुरी ओळवालन सहुराया कुरेवेने एवस कमेने वी हुरी हा कमका बुनेमुनु एच्चे पुनेवुनी अशाना बलहट्टा केन हुट्टा
1: दरफुले कोंगेले को आई
2: मम्मा हैप्पी एन्नुंदो
0: अशाना एही जहुरा ए पहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआंवे मी मम्मा बेनु बिगोय
0: जहुरा देखकी वाहाका अशाना कबूल एन्नुकुरे वुमायकु कुरंगे कंतो के वाहाका देखकुम के पतलका तेमवेस अशाना देखकी एहेम वाहाके
2: मम्मा नुजेने तिहेन उलेका डेडी आलु मेरी कुरम वीनु
0: अशाना मडु मडुम बुनी
1: दरफला डेडी आय को नोळे विगेनेनो मम्मा डिवोर्स वी ए नोनस मिहा हैप्पी को उले उलेफा देंगे वह कुट्टाला खामा कुत्ता दरी फुलती आई
0: वारा लोई पाए को जाहुरा पुनी
2: बादी यो बकिया मेरी कुरम वीनों है ए वे मम्मा की क्या तो बुननी बालालम वे के मियाई
1: अब वह कुरम वीनो डैडी की क्या बुने
2: डैडी पुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने तिया मम्मा कह रही गाहाल बालाशो ए वाह का दक्कालं डैडी गुलियस मसले नहीं है
0: मिहा तकी एक हाला ओका तेरी मी है